0: इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
0: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।